दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलचलम् सर्वदिशाक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम्

0: पुरुषार्थ हीना प्राणी, बट दोज हु आर आलसी लेजी डोंट वॉन्ट टू वर्क पुट द वर्क ऑन दैट ऑन दैट ऑन दैट डोंट वॉन्ट टू स्टडी डोंट वॉन्ट टू वर्क. पुरुषार्थ हीना प्राणी सब कुछ देख कर रोई. एंड दैट वन वेन ई सीज माय नेबर हैव वन न्यू कार, ओह ही बॉट वन कार फॉर हिज सन, देन हिज वाइफ सेड नॉट ओनली ही बॉट हिज सन, हिज डॉटर गॉट ऑल्सो वन कार. ओह गॉड, फ्रॉम वेयर डू दे गेट ऑल? दे वर्क्ड. पुरुषार्थ हीना प्राणी सब कुछ देख कर रोई. दे आर jealous. So one man came and said, asked, how are you? He said, I'm okay, but I have one big problem, I'm unhappy. I said, why? Because my neighbor is so happy and have everything. So he said, unhappy because of his neighbor is happy. There are people like this. That's gone. Naidi, what is Naidi? The envy.
1: Jealous.
0: पुरुषार्थ हिना प्राणी सब कुछ देख कर रोई. उसे कुछ भी नहीं मिलता. दे डोंट गेट एनीथिंग. मिलेगा भी तो देगा खोई. इन केस ऑफ केस इफ दे गेट समथिंग दे विल लूज इट दैट ऑल्सो. पुरुषार्थ हिना प्राणी सब कुछ देख कर रोई. पुरुषार्थ नाम, पुरुष नाम पुरुषार्थ का. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पुरुषा. डजंट मैटर मेल और फीमेल ह्यूमन. पुरुष नाम पुरुषार्थ का पुरुषार्थ करने से सिद्ध हुई. नहीं सॉरी. जो है देव के भरोसे वृथा जन्म गमाए. देर आर सम पीपुल, गॉड विल गिव मी एवरीथिंग एंड यू गो एंड मेक ए पूजा हियर, यू गो पूजा, गॉड विल गिव एवरीथिंग. व्हाट विल गॉड गिव एवरीथिंग? जो है देव के भरोसे वृथा जन्म गमाई, दे विल लूज दैट चांस. देव नाम है पुरुषार्थ का. सो गॉड इज मीन्स द पुरुषार्थ, द वर्क, गुड वर्क, पॉजिटिव वर्क. करने से सिद्ध होई. इफ यू विल वर्क देन यू विल गेट इट. सो देयर इज तुलसी ब्यूटिफुल भजन ऑफ द अच्छो राम जी. ब्यूटिफुल भजन. देयरफॉर गॉडेज आर दे हु वर्क गुड. ही डिड गुड टू एवरी वन, हर्ट नो वन, इंस्पायर्ड एवरी वन, लीड एवरी वन इन द स्पिरिचुअल पाथ. Not misguide them from the path, not create jealous or doubts. Then you go to the Rakshasa in the lower lokas. Deva. And this Devata said, finally, let me come please to the human life that I can again this practice and get the mokshas. So, finally, there will be then Mahapralaya. But not maybe end of the Kali Yuga, no. We don't know when. There are many, many Sati Yugas. And many times the Shiva himself came. Which Shiva are you telling? The king of the Himalaya, Hemraja, or the Shiva? The king of the entire Himalaya range and this all, which was also more than half the India, north side, the China, this all, that was the great ruler, the kingdom. And his seat was in Himalaya and Kailash. And Parvati also Hemraj, the king's daughter, Ganga and Parvati. But Swayambhu was different. Swayambhu was ruling from the Kailash Mount, and they, Hemraja was the whole ruling there. So this is another story we are going.

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति परब्रह्मा दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति।

ॐ नमो श्री प्रभुदीप नारायणम् नाउ ॐ नमो श्री प्रभुदीप नारायण ॐ नमो श्री प्रभुदीप नारायण टच योर एल्बोज इन द फ्रंट ॐ नमो श्री प्रभुदीप नारायण ॐ नमो श्री प्रभुदीप हम सब दास प्रभु शरण परायणम लाउड

नारा श्री प्रारायण भगवान की हेंसार लेग सपार्ट नाउ बेंड टू द लेफ्ट लेग्स मोर अपार्ट मोर अपार्ट मोर मोर मोर मोर मोर एंड स्लोली इन द मिडल राइट साइड

हर हर भोले नमः शिवा. स्टैंड ऑन द राइट फुट राइट लेग एंड लेफ्ट ऑन द थाई. यस बैलेंस ऑन वन एंड हैंड्स लाइक दिस. बैलेंस balance

देखिए फूल को आगे रख कर उस पर ध्यान करना। कम इधर, अदर लेग प्लीज, यहाँ से वहाँ दूर रख करके रखो फूल, और फिर देखना अब पड़ा तो डंडा ठोकूंगा जोर से। सो वंस मोर कॉन्सेंट्रेशन, बैलेंस, पुट इट 2 मीटर डिस्टेंस फूल, फूल 2 मीटर दूर तक। हाँ वापस जाओ, अब देखो उसको, फिर जा थोड़ा पीछे, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट, उसी को देखना है।

0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान की देवपुरी समाधि। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की नाहम करता।

अमृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनं मुर्वारुकाम्य बन्धनात् विद्योर्मुक्षीर्मा अमृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बन्धनात् मृत्योर्

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलमगुरुमूरति पूजामूलमगुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।

0: ओ गुरुदेव
1: ओ गुरुदेव मैं
0: महाप्रभु जी,
1: महाप्रभु जी
0: आप ही ब्रह्मा, यू आर द ब्रह्मा,
1: से ब्रह्मा
0: दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर्स,
1: ब्रह्मा, který je stvořitel.
0: ब्रह्मा विष्णु, नो द गॉड विष्णु, मेनी मेनी टाइम्स मेनी मेनी, ऑल्सो लाइक वाट कॉल बी द कृष्णा.
1: Jsi Bůh Višnu a také ho známe pod jménem Krišna.
0: आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप हो कैलाश के वासी, एंड ओ गुरुदेव यू आर ऑल्सो रिजाइडिंग इन द कैलाश.
1: O Gurudeve, ty také přebýváš na Kailáši.
0: यू आर रिजाइडिंग देयर.
1: Tam žiješ.
0: आप हो नारद, आप हो सारद, आप हो शेष सुखराशि, आप हो नारद, आप हो सारद, आप हो शेष सुखराशि, आप हो ही, आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, यू आर इज ब्रह्मा, आप ही विष्णु, एंड यू आर कैलाश, लिविंग इन द हिमालया इन कैलाश. आप हो नारद, ऑल्सो यू आर द नारद ऋषि.
1: Jsi také Nárad Rishi.
0: आप हो शारदा, एंड आप हो शेष शुक्राशि. शेष शुक्राशि इज वेर दैट वेरी दिस स्नेक वेरी बिग अंडर द ओशन,
1: Se
0: एंड
1: zukra.
0: देयर वेर विष्णु इज रिसाइडिंग.
1: Se zukrás je ten velký had pod oceánem a tam žije Višnu.
0: शेष, एंड शेष मीन्स ऑल्सो वाट रिमेन्स आफ्टर ऑल, बट स्टिल देयर रिमेन्स.
1: A ses je také to, co potom všem zůstane.
0: आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, आप हो ध्यानी, हो महाप्रभु जी,
1: ओ महाप्रभु जी,
0: आप ही ध्यानी, यू हैव मेडिटेशन, यू नो दैट, ओ देवपुरी जी,
1: máš meditaci, znáš to, ó Devpuriji.
0: आप हो ज्ञानी, यू आर द नॉलेज,
1: Jsi poznání.
0: आप हो योग प्रकाशा, एंड यू आर द लाइट ऑफ द योगास.
1: Asi světlo युग.
0: महाप्रभु जी सेइंग टू देवपुरी जी,
1: To říká Mahaprabhuji Devpurijimu.
0: आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, आप हो देव सब देवी, आप हो सूर्य प्रकाशी, यू आर ऑल्सो माई लॉर्ड, यू आर द शक्ति,
1: Můj pane, si také šakti
0: एंड यू आर ऑल्सो भक्ति
1: a bhakti,
0: देवी.
1: bhakti devi.
0: आप ही सूर्य प्रकाश, ओ देवपुरी जी, यू आर द सूर्य, द सन प्रकाश.
1: ओ देवपुरी जी, ty jsi také slunce.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो वेदों के ज्ञाता, ओ महाप्रभु जी, यू नो द वेदास, यू नो द वेदास.
1: ओ महाप्रभु जी, ty znáš वेदी.
0: आप हो भक्त उर्वासी, एंड ऑल द भक्तास आर इन अवर हार्ट.
1: A všichni baktové jsou v našich srdcích.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो संत नाम के दाता, आप हो सत नाम के दाता, ओ गुरुदेव यू आर द सत द ट्रूथ.
1: ओ गुरुदेव, ty jsi pravda.
0: नाउ सो फ्रॉम दैट ट्रूथ नेम यू आर द दाता, ओ गॉड.
1: té pravdy ty jsi.
0: Apho bhakta urvasi. And you are Gurudev in our heart.
1: A Gurudev jsi v našem srdci.
0: Urvasi is the heart.
1: Urvasi je srdce.
0: Apho vedon ke gyata. You are knower of the Vedas.
1: Znáš Vedy.
0: Apho bhakt urvasi. Apho satnam ke data. And you are the name of the

ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सदगुरु स्वामी महाद्वानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठात एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों को कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ओईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delhi Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delhi Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delhi Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Delhi Life.
1: Yoga in Delhi Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji. DG, Pushpa ji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, विश्व शांति नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर
1: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए,

वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या? और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या? 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जून है। 4 लाख मान का जून के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे। ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या? जब परमात्मा की कृपा होगी

स्वराप गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्तं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्तिः परब्रह्म।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव
1: जय
0: सतगुरु स्वामी महादेव।

0: जय श्री श्री देव पुरुष महादेव की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय।